Το πέρα σου δεν ξέρει πάρει ότι έξε την δάσο μου σαν το ρόγο μαχμό για το μόρο σαν μάρο. Όλοι είναι καρκή μου γορήμα σαν πέτρε σαν μερικό σέζαρ. Σαν τάση αμύρι πιβίνα σαν σκρίτη πιβίνα πιδά κακουρά λαϊ. Πόκε βίνει πως είναι σου, ώρα. Τι μόνο τα πέλα είναι μόσο μου σαν μόντι τζάν καρή την επόμενη νόμιζα. Ρόι λέει χάλαι. Λόγω στον ουρί πόδι έρνε με αρκετή. Σαν τα γοντάλη και τη ρωέ, σε ζωντζή, σώρο τα σώλα την δικτή σα ρωέ, ρωτήσει είναι ο χοβόρτ με ανεβαίνει, εγάρα τα σώλα την, ρα και αν πέραμα, η ερνεβαίνει, αμπρο ρα δεν είμαι, ρε, ο τσόλο τα σώλα τσάρι και σα ρωέ, ρε, πολύ κομμό σαν λέει, ενώ πάρτα πολύ, τε στο κουνέπαινι, δε ρε, πανίκο, τσάντζε σε δεχέ, ξένα, τα σώλα τα χοβόρτ μαζί, αλλά και τη δεχέ, ξέζοντζε, 40% देखाएको छ यदि तपाईँहरू आफ्नो डेलाई प्लान गरिराख्नुभएको छ भने पके पनि मौसमलाई ख्याल गरेर हिँड्नु होला एन्ड अल्सो वुड जस्ट लाइक टु लेट द एभ्रीवन नोस द्याट वी आर प्लेइङ मोस्ट अफ द दसैँ सङ विच इज वी आर राइट इन द बिगेस्ट फेस्टिभल अफ नेपाल सो वी सेलिब्रेट आई थिङ्क द दसैँ स्टार्टेड फ्रम द 11th अफ अक्टोबर एन्ड देन The main day will be on the 21st of October. So on that day, the basically people will go to the relatives, friends and families, and mainly to the other people, and we get blessing from them and share food, music and love. So that's what we are doing on the biggest festival. The Nepal is one of the biggest festival, and right after the Dasai, that will be the another festival which is called the Tihar, and also that during that time also we will be celebrating by sharing food and love and music and a bit of a drinks as well. So yeah, भन्दै पहिलो गीत तर्फ नै मलाई लान्छ है मैले अघि उत्तर स्वर यस्तै नै दसैँ गीत दसैँ आयो एकदमै यो गीतले बस्न जाँदाखेरि सुन्दै जाँदाखेरि अलिकति छुट्टै खालको यसले मजा दिने गर्छ यसले अलिकति छुट्टै समयमा पुर्याउने गर्छ दसैँ आयो